हर गोविंद सुब मत प्रकाशक, गुरु हर राय नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी, तेग बहादुर परम कृपाला, श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला। तरों तरा तरपन पुन सीसा, बंदों बार बार जगदीसा। जा मैं अमृत नाम है, ज्ञान भक्त वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत, बंदों कर अनुराग। गुर के शब्द कमाए, जिन जीते पंच विकार।

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं आना, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तप स्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करने दे लई, अपनी हाजरियां लगवाउण दे लई, सतसंगत हरि जस कीर्तन दा लाभ उठाउण दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनियां बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जिया दे 300 साले दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। ये कितने दिहाड़े कट्ठे होए हन। ब्रह्मज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, वडभागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहिगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज दे नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन कीता, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरशां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हन किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करदे हन, मत्था टेक रहे हन, धूड चक चक के मत्थे नाल ला रहे हन, धन धन कर रहे हन, धरती ते नमस्कार करदे हन बारंबार, जिन्हां नूं लोक नमस्कार करदे हन। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किस नूं नमस्कार करदे हो, तुसी किस नूं मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो? भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ए धरती दा कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती दी ए समर्था है कि पवित्रता बख्श सकदी है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगां वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषां दे जीवन नूं कोई सास उस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओह विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह उन्हीं जिन्हां ने सात संगत, जिन्हां दे नां तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां। बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत, संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते सात संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं सात संगत ते सुणाउंदे हुंदे हन। पटियाले वाले भाई वीर सिंह जी सात संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओह डेरे दे विच होके जांदे, मिल के जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहंदे ने पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले दा तुसी कहंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असी बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, ना तुसी मत्था टेक दे, नमस्कार कर दे, 25 मिनट मत्था टेकिया, 20-25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर दा भजन होया, असी तां अपने आप नूं नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बैटरी डाउन हो जांदी है कम करदी करदी, फिर उस नूं चार्ज करन दी लोड पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तां मत्था टेक के असी अपने आप नूं चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो सास संजिथे वाहिगुरु दा भजन, वाहिगुरु दा सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे। सो शिव जी भगवान कहंदे ने हे पार्वती, इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असी एवें नहीं कहंदे इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे असी मत्था टेकदे हो ए धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसे ने परमात्मा दी याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ऐसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे फिर पढ़ो,

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सतनाम श्री
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्होंने बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुआं कोल बैठा करते, भाई फकीरां कोल बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जलदे नहीं हन। सो बाहर साध सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया? वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए? कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह? कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है? की करिए हुण? किसे नहर च धक्का दे दिओ? कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी ये तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए? पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारे ने नाम दी दात दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू ये गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। ये नाम दी दात गुरु तो जो मिलती है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन लत्तां भी साध संगत कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुन पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालक नूं अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानू दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनू तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनू तां कोई परवाह नहीं, तुहानू दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਸ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਸ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਸ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਭੇਸ ਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। महापुरशा ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ए बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीद नांगलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज, तिने त्याग दतियां। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज, तिने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इस नूं घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उस नूं भी कई लोक लाणता पाउण लग गए घर वाले नूं भी, दस तूं की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुर्दा होए मरीद ना गली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़िया दे पौन ते सुट देंदे, सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: किते सास नूं परख हुंदी

इन्हां पंक्तियां विच उस परमेश्वर की वडियाई करदे होया उपदेश करदे हन। जौ गुरदेव ता कंध नहीं हिरै, जौ गुरदेव ता देहो राखिरै। गुरु दयाल होवे जे उसने रखना है ता कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किधरे कंध नहीं हिलती। ते किधरे जे गुरु दयाल हो जावे ते सारा देहरा ही सारा मंदिर ही ओ घुमा दिंदा। ए पवित्र शब्द ज्यों ज्यों नामा हरगुण उचरै भगत जनां को दे

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aave, mohe ant lapkana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kareem, har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo, deen ke date, mera gun ab gun na vichare.

है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी सा। तापा किया काड़ा जीव, जिदा तू राखा हो राखा ल। गुरु नु अपना जान के ऐसा भजन भी आता है। कहो बेनती अपने सतगुर पाहे, बेनती करो गुरु अगे, गुरु नु अपना जान के उपरा नहीं, गुरु गुरु अपना जान के बेनती करो। कहो बेनती अपने सतगुर पाहे, अपना जान के बेनती करो। साखी बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत बार पढ़ सुन विच आउंदी है, उच कर हस है। पशौर तो आई संगत, गुरमुख परिवार, एक छोटा जा बच्चा, उसकी दोहरी दस्तार सजाई हुई दोहरी, जो मां अपने बच्चे बोल च बठाड़ के जपजी साहब का पाठ सुनावे ना, गोल च लैके वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु बच्चे सुनावे ना, वो बच्चा डोलूंगा नहीं, सब आखो सकना, बच्चे का कोई कसूर नहीं। मत कोई समझे साडे बच्चे बिगड़ गए, साडे बच्चे बिगड़ गए, सारे बिगड़ गए जी, गाने वाले असी हैं, असी ध्यान नहीं दे। जमदे बच्चे गोद च लैके पुरानिया मातावं कर दी आदि सी, सब आखो सकना, चक्की पीढ़ी ना सुख नहीं पानी, तो गोद च बच्चा होना, उस चक्की नहीं रही, बच्चा गोद च है, मां चरखा करती है पाठ कर रही। बल्कि पिताजी पासों ऐसा वचन भी सुनिया, इतिहास भी जिक्र आता, जदों बीबी लंगर तैयार करती है ना, उदो जपजी साहब का पाठ करती, मूल मंत्र का पाठ करती, जेड़ा लंगर पाठ करदिया तैयार किया जाए तो वह अमृत बन जाता, जेड़ा खाऊगा उसे भी असर होगा। तो जे फिल्मी गाने लाए हुए की कोई अदरा टेलीविजन वेख्या जा रहा है, नाले प्रसाद तैयार हो गया, वही असर होना। बच्चे ने जो मर्जी बना लो, चाहे भक्त बना लो, दादा बना लो, एवं तो नहीं क्या जननी जनी भक्त ही जान, कह दाता कह सूर, ये नहीं नहीं तो जल्दी बाजर ना ही पैम। बच्चे वाल जिस मां बाप ने पूरा ध्यान नहीं दिता, वो अपने फर्ज तो गाफले के, सब आखो सतनाम श्री वाहे, फिर आखो सतनाम श्री वाहे, अज तो शुरू कर दो, जे करते ने धनबाद अमृत वे उठ के, जिन्ना टाइम है, ड्यूटियां बहुत सख्त ने इधर अमरीका में, बहुत सख्त ड्यूटियां ने, समय सिर जाना पैदा, जिन्ना टाइम मिले जो मिले, सवेर वे मिलता शाम को मिलता जो भी मिले, बच्चे नूं गोद च लैके सिमरन करो, जब हिसाब का पाठ छोड़ो, कन्ना चो वो गल हृदय जाऊगी। एक पारस पत्थर है उन लोहा छुवा दो तो सोना बन जाता, जे नाम हृदय में वस जाए तो फिर भाई मनी सिंह ही बनूंगा, सब आखो सतनाम, फिर भाई तारू सिंह ही बनूंगा, हृदय च वस गया,

कमाल दियां गल्लां की कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन नै लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनी है कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नू तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नू धारण करना है। एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

तीन चीजा एको जिया खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा एको जिया इनू त्रिपावल की दे कहते हैं।

मन आलसी है। ये मन आलसी क्यों है? ये आलसी मन अपने मालिक अपने परमेश्वर नु क्यों नहीं याद करता? इस मन दे आलसी

कोई अश्वमेध यज्ञ करे अपने बराबर तोल के अपने वजन दे बराबर तोल के सोना चांदी दान कर लवे कोई प्राग दा इशनान कर लवे पर परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं पहुंच सकते जब सतना

मेरा नाम ले दी, तेरा काम हो जाएगा। इन्ना काम करी, मेरा नाम ही चलता है। मेरा नाम ले दी, तेरा काम हो जाएगा। पर ख्याल करो, जे एक संसार दे विच किसे वड्डे मनुख दा जेड़ा कुछ भी नहीं, जेड़ा कुछ मनुखां ते सिर्फ हुक्म कर सकदा है, जेड़ा कुछ भी नहीं, जिस दे कोल कुछ हो सकदा है, कुछ मनुखां नाल ज्यादा साधन होण, जे उसका नाम लैके काम हो सकदे ने, जेड़ा फिर वड्डियां तो वड्डा शहनशाह है कि उसका नाम लैके साडे काम नहीं हो सकदे। जब सतनाम श्री फिर उसका नाम लैके भी काम हो सकते ने। नाम लेना, उसकी याद विच रहना, उसके नाम नू विसारना ना, उसके नाम नू हिरदे विच उकर लेना, ते धर्मराज नू कह देना, जिसने तैनू बिठाया मैं उसका बंदा। जब सतनाम श्री हो फिर तो धर्मराज दे भी अड़का नहीं लगना। जब सतनाम श्री वाहिगुरू, ते जदों धर्मराज नू भी पता लग गया ना, जिसने मैनू बिठाया है, ए उस मालिक दा बंदा है, उसका नाम लै रहा है, ते ओ भी अगों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, ते पता की बोलेगा, हूं सेवक ठाकुर अविनाशी। जब सतनाम श्री, मैं तुहाडा सेवक, तुसी मेरे मालिक। इस करके कहंदे नाम

जे पंख नहीं ते कौन कहेगा पंछी, जे धरती विच जल नहीं ते उपज नहीं, उस सुल्तान नू कौन कहेगा सुल्तान, जिस सुल्तान नू कोई सलाम बुलाउण वाला नहीं, जो सतनाम श्री वाहिगुरु, कौन कहेगा सुल्तान जी?